0: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐச்சி நகோயா.
2: Good morning, you are listening to the first update of the day from the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya. I am Prerna Sharma and alongside me is Mudita. India has already been in action across several disciplines this morning with some important results coming in. Let's take a look at the latest developments and bring you up to the speed with all the action so far. Mudita, over to you.
3: Shukriya Prerna. भारत ने आज शानदार शुरुआत की है. ट्रैप शूटिंग में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही. चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया. वहीं कुवैत ने 325 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता. एक अच्छी खबर नीरू ढांडा ने और दी है कि वो व्यक्तिगत फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है. 27 निशानेबाजों के व्यक्तिगत क्वालिफाइंग राउंड में नीरू पहले स्थान पर रही हैं. आशिमा ने 16वां जबकि मनीषा ने 23वां स्थान हासिल किया. वहीं पुरुषों में शपथ भारद्वाज भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं. 117 अंकों के साथ शपथ भारद्वाज 8वें स्थान पर रहे. वहीं पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में भारतीय टीम 339 अंकों के साथ छठे नंबर पर रही. अगली खबर हमारे पास तीरंदाजी से है प्रेरणा. तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया. वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज

0: देवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खोन सादिकोव से और नीरज चौहान का मुकाबला भूटान के लैम दोरजी से होगा।
1: In track cycling, the Indian women's team sprint trio of Celestina, Sarita Kumari, Keerta Rangaswamy, Chikka finished 6th in qualification, clocking 50.414 seconds. They were 3.742 seconds behind leaders China. The qualification round determines the seeding for the next stage. With 6th place set to the face 4th place, India will therefore take on Chinese Taipei in Heat 1 at the 11:30 this morning. The Indian men also competed in the team sprint qualification. Rohit Singh, David Beckham and Ronaldo Singh recorded the seventh fastest time among the 8 teams in the field. They will now look to improve their performance as the competition moves into its next stage. In Kurush, Vipin's Kumar campaign in the men's 66kg category came to an end in the round of 16. He lost 0-3 to South Korea's Yoon Hyun Soo. The available scoring indicates that Vipin conceded 2 points on a chala, a basic throwing technique in Kurush, while the match feed also credits him with a throw. This results bring his individual campaign at the games to a close.
0: और वही भारतीय महिला स्क्वाश टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, वहीं अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में शिकस्त दी। जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच जीतकर ईरान के खिलाफ 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। इसमें बता दें कि तन्वी खन्ना की जो ओपोनेंट थी ईरान की नरगिस सुल्तानी, वो खेल के बीच में ही रिटायर हो गई थी और पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: Now gliding through the slalom gates, the Canon and slalom with the speed and focus, H. Kewat logged in an 8th place finish at 118.22 seconds, closely followed by P.S. Rathod claiming 10th with a time of 127.70 seconds. P. Jagta battled through the course to secure 7th place in 224.20 seconds, while R. Sain wrapped up the run in 9th place at 342.72 seconds, pushing through to the finish line. S. Chahan rounded out the Indian lineup in 11th place with a time of 344.87 seconds.
0: और एक खबर क्रिकेट की हम जरूर देना चाहेंगे कि सेमीफाइनल में अब भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। नेपाल और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो गया है, बल्कि चारों क्वार्टर फाइनल मैचेस बारिश की वजह से रद्द हो गए हैं। ऐसे में बेहतर रैंकिंग के आधार पर श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है और कल भारत और अफगानिस्तान का मैच भी बारिश के कारण नहीं हो सका था। रिजर्व डे नहीं होने के कारण भारत ने भी बेहतर रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था।
1: And looking at the medal tally, India holds the 12th position on the medal tally with a total of 46 medals, in which Mudita 4 are gold, 21 silver and 21 are bronze.
0: तो इसके साथ ही मुदिता और प्रेरणा को दीजिए इजाजत। ठीक एक घंटे बाद हम फिर हाजिर होंगे नई और ताजा अपडेट्स के साथ। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெற்று வரக்கூடிய 20வது ஆசிய விளையாட்டுகள் 2026 அண்மை நிலவரம். ஆகாஷ்வாணி மதுரை எஃப்எம் ரெயின்போ 103.3 அண்ட் ராமேஸ்வரம் 100.9 நாம கேட்டு ரசிக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி ட்ரைட்டம் பீட்ஸ் காத்திருக்க நேரம். சூப்பரான பாட்டு கேட்டு மீண்டும் நினைவலாம்.

0: 27 to Espigen's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: और अब बात टेनिस की, जहां मेन्स सिंगल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश और इंडोनेशिया के गुनावन त्रिसमुवंत्रा के बीच मुकाबला जारी है. फिलहाल डी सुरेश लीड कर रहे हैं 7-5 और दूसरा सेट बराबरी पे चल रहा है. उम्मीद है कि वो भी यहां से अगले राउंड में प्रवेश करेंगे. वहीं टेनिस में ही कल जो सुमित नागल का मैच बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया था, उस मैच में पहले सेट में नागल 3-2 से आगे चल रहे थे, लेकिन बारिश के कारण उस मैच को रोकना पड़ा था, तो ये मैच आज फिर से होगा. टेनिस में ही पुरुष डबल्स के मुकाबले भी आज शेड्यूल्ड हैं. युकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी कजाकिस्तान के बेबिट जुकायेव और डेनिस येवसेयेव की जोड़ी का सामना करेगी. अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी का मुकाबला नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी से होगा. वहीं मिश्रित युगल में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के क्यारिन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा.
0: And there is plenty of Indian action to look forward to as the athletics program reaches its final day with 9 finals featuring Indian athletes or teams. Dev Kumar Meen and Kuldeep Kumar will compete in the men's pole vault final, while Pooja and Supriya Basavaraju will contest in the women's high jump final. In the men's 5000 meters final, double medalist Gulveer Singh and Avinash Sable will be in action, while Anushka Yadav and Tanya Chaudhary will compete in the women's hammer throw final. Medals will also be decided in the men's and women's 800 meters, as well as the men's, women's and mixed 4x400 and 4x100 meter relay finals. And looking at the medal position, India is currently holding 12th place on the overall medal tally. The Indian contingent has secured a total of 46 medals, comprising 4 gold, 21 silver and 21 bronze medals. Talking about the top 3 leaders, in first place we have China leading the standings by a huge margin with 234 total medals, 135 gold, 53 silver and 46 bronze. Second place Japan and third place South Korea.
1: और वहीं आज आगे जिन मुकाबलों पे हमारी नज़र रहेगी प्रेरणा, उसमें बॉक्सिंग के मुकाबले बहुत अहम हैं, क्योंकि वहाँ मेडल्स हम पक्के कर चुके हैं, मेडल का रंग बदलना बाकी है. वहाँ वेमेन 65 kg में परवीन का मुकाबला होगा चाइना की ली शू से, जो अभी शुरू होने वाला होगा. और इसके बाद पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश का मुकाबला होगा फजलुद्दीन एर्किनबोयेव से और नरेंद्र का मुकाबला होगा एबेक ओराल बे से, जो कि कजाकिस्तान के हैं और ये 90 किलोग्राम के भार वर्ग में होगा. तो इसके साथ ही ये अपडेट ख़त्म करने का समय हो गया है. हमें दीजिए इजाज़त, ठीक एक घंटे बाद हम फिर से हाजिर होंगे नई और ताज़ा अपडेट्स के साथ.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 அண்மை நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டோம்.
4: மதுரை எஃப்எம் 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9
5: எஃப்எம் ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.

0: 26 आईटी नगोया।
1: Welcome once again to the updates of the Asian Games in Aichi, Nagoya. India have made a strong start to the day with the country adding another gold and several athletes making their way into the medal rounds. Neeru Tanda has won India's fifth gold medal of the games in the women's trap event. Neeru had earlier teamed up with Manisha Kheer and Ashima Elawar to secure a silver medal in the team trap event and has now followed that up with the gold in the individual competition. In recurve archery, Neeraj Chauhan has registered a notable victory over Republic of Korea's Kim Ji-deok, a multiple-time Olympic and World Championship medalist. The result keeps Neeraj's campaign moving forward and strengthens India's hopes in the event. There is also plenty to cheer about in boxing, where Parveen Huda and Ankush Panghal have both won their respective semi-final bouts to book places in the finals. Parveen produced a commanding 5-0 victory over Xian Liu Xing in the women's 65 kg semi-final to become first Indian boxer at these games to enter the gold medal bout. Ankush had also secured his place in the final, assuring India of at least 2 silver medals in boxing. And building on that massive boost to a medal count, where shooter Neeru Tanda scripted history by winning India's 5th gold medal in the women's trap event with a record-setting score of 28, the action at the shooting range is far from over. All eyes are now locked up on the trap men individual final, where Shapat Bharadwaj is battling it out in the medal round. He's currently sitting in the 7th place with a score of 7 as he looks to stage a comeback and fight his way ahead at the leaderboard. And now Mudita will take you through some of the key developments from across the games.
2: जी प्रेरणा, मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने एक बड़ा उलटफेर किया है। उन्होंने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एर्किनबोग को स्प्लिट डिसीजन में 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल बाउट में जगह बना ली है। और ये सफलता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि फजलुद्दीन एर्किनबोग ने 2025 में इसी भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। बड़ी सफलता है ये अंकुश की, और इस जीत के साथ ही अंकुश 8 साल के बाद एशियाई खेलों उज्बेक की प्रतिद्वंदी पर जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज भी बने हैं। इसके पहले 2018 में एशियन गेम्स के पुरुष फ्लाईवेट 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अमित पंघाल ने 2016 के ओलंपिक चैंपियन हसन बॉयद उस्मतोव को एक टाइट फाइनल में 3-2 से हराया था। तो इसके साथ ही पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भी भारत का कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है। वहीं नरेंद्र बेलवाल ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। सेमीफाइनल में वो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन कजाकिस्तान के एबेक ओरलबे से 0-5 के एक मत फैसले से हार गए। होंगजो चीन 2022 में कांस्य पदक के बाद ये नरेंद्र का लगातार दूसरा एशियन गेम्स मेडल होगा। और इसके पहले परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था और पक्का कर दिया था कि कम से कम वहां भी रजत पदक भारत की झोली में आएगा। इसके अलावा 3 और मुक्केबाज भी हैं जो पदक तो पक्के कर चुके हैं, लवलीना बोरगोहेन, प्रिया घनगस और कपिल पोखरिया। अब देखना है कि पदक का रंग कौन सा रहता है।
1: एंड टीम इंडिया इज ऑल सेट टू continue in action in the volleyball court today, and in the men's pre-eliminatory round pool C, India is head to head now against Qatar at the Park Arena Komaki. So Qatar is at 3 and India is also at 3, so we could see Mudita ki some live action could come up and some interesting results will be awaited, some medal will be awaited in volleyball.
2: जी बिल्कुल। और इसके साथ ही टेनिस में पुरुष एकल के दूसरे राउंड में सुमित नागल ने दक्षिण कोरिया के सियोंग

0: Hello and once again we are back with the early updates on Asian Games in Aichi Nagoya, and we are shifting right to the live action right now. I'm Prerna Sharma and I have alongside me Mudita, and the live action inside the park arena Komaki, we have an absolute thriller unfolding in the men's volleyball preliminary round pool C as Team India battles Qatar. So talking about the set one, the Qatar took the opening set by 28 when India remains at 26. A grueling neck and neck 34 minute battle happened in the set 1 and Qatar led it. India came into this decisive pool C clash riding massive momentum after consecutive 3-0 straight set victories over Vietnam and Hong Kong, China. However, Qatar managed to edge out India in the extra points of set 1 to draw first blood. And the current match status, the overall score as of now is Qatar is at 16 and India at 18. India is leading for now, and let's see how the second set turns up. India needs to mount an immediate response in the second set to level the contest and stay on the top of pool C. So what is the updates in the shooting? A wonderful day has been there in shooting today, Mudita.
1: Ji bilkul Prerna, shooting mein aaj shandar din raha hai Bharat ka. Ek ke baad ek do safaltaye mili hain. Aaj subah pehle trap shooting mein Bharatiya mahila team ne shandar pradarshan karte hue rajat padak jeeta. हमारे जो श्रोता अभी तक की अपडेट्स नहीं सुन पाए थे, हम उनके लिए फिर से बताना चाहेंगे कि भारतीय महिला टीम ने ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही. उसके बाद आई वो सफलता जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था. नीरू ढांडा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया. महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस रही नीरू की. और ये एक खास बात है प्रेरणा कि ये पहला इंडिविजुअल गोल्ड है भारत के लिए इस एशियन गेम्स में. 26 साल की भारतीय शूटर नीरू ढांडा, उन्होंने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही. और इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई और उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया. वहीं पुरुषों की ट्रैप शूटिंग में शपत भारद्वाज फाइनल में पहुंचे लेकिन पदक के करीब नहीं पहुंच सके. कुवैत के खालिद अल मुदफ ने स्वर्ण पदक हासिल किया. चाइनीज ताइपे के कुनपी यांग ने रजत और चीन के की यिंग ने कांस्य पदक हासिल किया. तो इस तरह प्रेरणा शूटिंग में अब तक 15 पदक हासिल कर लिए हैं भारत ने, जिसमें 2 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं.
0: And some medals have come up officially, and now there are some unofficial medals that have also been confirmed in boxing. And stepping inside the ring, we have massive explosive updates from the Indian boxing contingent, where 3 major medal outcomes have just been locked in. Women's 65 kg semi-final, India's Parveen Hooda has stormed her way into the women's 65 kg final. With this dominant victory, she has guaranteed herself at least a silver medal, putting India within touching distance of yet another gold. Talking about the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal delivered a masterclass in the men's 80 kg semi-final to secure his spot in the gold medal match. He joins the final bound boxers, assuring Team India of at least a silver medal. Talking about men's 90+ kg semi-final, heavyweight star Narendra Berewal stood toe-to-toe in a fierce battle against world champion Ebek Urbale. Despite a courageous fight, Berewal has edged out in this semi-final encounter. Berewal officially signs off with a hard-earned bronze medal for the country. 2 final spots booked and a bronze secured. The Indian boxers are putting on an absolute show in the ring, Mudita.
1: और तीरंदाजी में भी प्रेरणा अच्छा दिन रहा भारत के लिए. धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खोन सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा. वहीं महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में कुमकुम अनिल मोहित क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं. और दिलचस्प बात यह है कि क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग चाई यांग से होगा. यांग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है.
0: Now taking our listeners to the cycling track, where India have made it through to the bronze medal race in the women's team pursuit. The Indian quadrant put together a strong performance in the heats, clocking 4 minutes 46.950 seconds, that of

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
0: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
0: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे, ये सब बात बताते हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
0: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के 2 एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के 2 ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
0: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
2: श्रोताओं, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
0: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
2: ओह, क्या हुआ था?
0: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
2: श्रोताओ, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
0: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
2: जी,
0: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
2: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
0: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
2: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
0: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
2: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
0: ओह,
2: वो स्वयं

0: से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली लेकिन अपनी जान दे दी।
0: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया।
0: जी,
1: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनकी माता को यह पुरस्कार प्रदान किया।
0: जी,
1: आइए श्रोताओं अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
0: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
1: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा जी जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
1: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
3: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
2: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
3: है? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
2: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
4: महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
2: बादशाह ने कहा,
3: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
2: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
3: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
2: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
3: बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है?

0: हांडी तो आग से बहुत दूर है।
1: बीरबल ने उत्तर दिया,
2: हुजूर अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती।
1: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
4: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा।
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ,
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: चलो जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: उन्हें बता देते हैं। हाँ।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
3: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
2: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
2: जी सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की
3: जय!
2: भारत माता की
3: जय!
2: फायर!
3: आगे बढ़ो।
4: साहब, वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
5: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
4: जी सर।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों

0: के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
1: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
2: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा ला के देता हूं। फायर! हुकम सिंह
3: जी सर,
2: एलएम जी सवाल फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
0: वो उनका साहस बढ़ाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
1: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
4: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं, कितना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
3: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ, मशीन गन लाओ।
4: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
3: अच्छा, यही मशीन गन। हुकुम सिंह, एक काम करो
4: जी,
3: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर।
3: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को, जल्दी करो।
4: जी सर।
3: बांध दिया सर, ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ। इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी। टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ देखो, ढील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर।
3: ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
0: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
4: संभल कर, संभल कर।
3: सर, सब यहाँ सर टिका लीजिए।
4: सर, ऐसे नहीं।
5: कालिका माता की जय।
1: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
5: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
1: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
5: साथी, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
3: साहब,
5: तुम लोग आगे निकलो।
4: ये आप क्या कह रहे हैं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
5: समझो।

0: उसे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
1: नहीं साहब।
0: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
1: नहीं साहब।
0: नहीं आदेश। इट्स एन ऑर्डर
1: सर।
0: जाओ। अलविदा दोस्तों। अलविदा भारत माता की।
2: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
3: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
4: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
3: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
2: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांगला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साई साई चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारत को ट्रैप शूटिंग में आज एक के बाद एक दो सफलताएं हासिल हुई। एक इंडिविजुअल गोल्ड और एक टीम इवेंट में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक हासिल किया भारत ने। और अब नए अपडेट्स के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं प्रेरणा शर्मा।
2: एंड अब एक नज़र वॉलीबॉल पे, तो एन इंटेंस इनकाउंटर इज करंटली अंडर वे एट पार्क एरिना कोमाकियास। टीम इंडिया स्टेजेस अ रिमार्केबल कमबैक अगेंस्ट कतर, फोर्सिंग अ डिसाइडिंग फिफ्थ सेट इन द मेंस वॉलीबॉल प्री एलिमिनरी राउंड पूल सी। कतर गेन द अर्ली एडवांटेज बाय विनिंग अ टाइटली कंटेस्टेड ओपनिंग सेट 28-26 इन 34 मिनट्स। इंडिया क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज इन द सेकेंड सेट, एस्टैब्लिशिंग अ 4-point लीड, बट कतर क्लोज्ड आउट क्रूशियल पॉइंट्स टू टेक इट 27-25 and extend their lead to 2-0. Facing a must-win situation, India responded with determination. The team secured the third set 25-23 to extend the match before carrying that momentum into the fourth set to deliver a convincing 25-20 victory and level the overall score at 2-2. After more than 2 hours of competitive play, the match enters its final place and both India and Qatar are at par now at 20-20.
1: और टेनिस में भी सफलता का दौर जारी है। अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी अगले दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर के मुकाबले में उन्होंने नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी को 6-2, 6-1 से सीधे सेटों में हराया। वहीं यू की भामरी

0: और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी का मुकाबला कजाकिस्तान के बेबेट जुकायेव और डेनिस येवसेयेव की जोड़ी के साथ जारी है। पहला सेट यूकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी जीत चुकी है और ये खबर बताते बताते ही फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है इस मैच का। 6-1 और 7-5 से यूकी भामरी और डी सुरेश की जोड़ी ने ये मैच भी जीत लिया है और वो भी अगले दौर में प्रवेश कर गए हैं। अब मिश्रित युगल के पहले दौर में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा। इसके पहले पुरुष एकल में सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश अगले दौर में प्रवेश कर चुके हैं।
1: And now let's take you through the archery action once again with more Indian archers now making their way to the quarterfinals. Dheeraj Bumdevra and Neeraj Chauhan have both advanced to the quarterfinals of the men's recurve individual event. Dheeraj, the World Cup final champion, will face Uzbekistan's Imrik Sadviok, while Neeraj Chauhan will take on Bhutan's Lam Dorji with the place in the semi-finals at stake for both Indian archers. In the women's recurve individual event, Kumkum Ali Mohod has also progressed to the quarterfinals. She will face Republic of Korea's Kang Chayoung in the next round with the semi-final spot on the line. So three Indian archers are now through to the quarterfinals across the men's and women's recurve individual events, keeping India's challenge firmly alive in the medal rounds.
0: और प्रणव एथलेटिक्स के मुकाबले भी शुरू हो गए हैं। आज पहला मुकाबला जो है वो मेंस पोल वॉल्ट का है, फाइनल है, जिसमें नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की प्रतिद्वंदिता जारी है। और एथलेटिक्स में आने वाले कुछ इवेंट्स और भी हैं जहां सबकी निगाहें आज होंगी गुलवीर सिंह पे, जो आज तीसरा मेडल अपने नाम करने 5,000 मीटर के फाइनल में उतरेंगे। गुलवीर इससे पहले 1500 मीटर और 10,000 मीटर में रजत पदक जीत चुके हैं और इसी इवेंट में भारतीय एथलीट अविनाश साबले भी शामिल होंगे, जो स्टीपल चेज में मेडल से चूकने के बाद अब पोडियम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारतीय टीमें 3 रिले फाइनल में भी हिस्सा लेंगी, जिसमें शामिल है मिक्स्ड 4x100 मीटर और पुरुषों और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस। इसके अलावा मोहम्मद अफसल पुलकलाकत 800 मीटर रेस में हिस्सा लेंगे और आज ट्रैक और फील्ड में मेडल जीतने के और भी मौके होंगे, जिनमें महिलाओं की हाई जंप, हैमर थ्रो और 800 मीटर रेस शामिल है। ये मुकाबले अब से कुछ ही देर में शुरू होंगे और उसके साथ ही हम फिर से लेकर के आएंगे आपके लिए नए और ताजा अपडेट्स।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: தன்கோ. இன்னும் சில நொடிகள். ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 அண்மை நிலவரம் டெல்லியில் இருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: ஏசியன் கேம்ஸ் 2026 ஐசி நகோயா.
2: Hello and welcome back to our ongoing Asian Games coverage. I am Prerna Sharma and alongside me is Mudita, bringing you the latest updates live from the games. We start right away from the volleyball news from the court at Park Arena Komaki, where Team India has just pulled off an extraordinary comeback to secure a hard-fought 3-2 victory over Qatar after dropping the opening two sets. India came into this final group fixture in electric form, having already swept both Vietnam 3-0 and Hong Kong China 3-0 in straight sets to establish themselves at the top of Pool C. However, Qatar proved to be their toughest challenge yet. Qatar took a tight opening set 28-26 in extra points after India squandered two set points. In the second set, India established a comfortable 4-point lead midway through, but Qatar mounted a late surge to claim it 27-25 and take a 2-0 match lead. Facing a straight sets defeat, India showed tremendous grit down the stretch, holding their nerve to take their third set 25-23 and keep their hopes alive. They carried that momentum into the fourth set, dominating the rallies to win 25-20 and level the match at 2-2. It all came down to an extraordinary extended tiebreaker decider, where India held their composure through a dramatic back and forth sequence to claim the fifth set 24-22 and seal an iconic win. With this stunning reverse sweep, India finishes undefeated at the top of Pool C to advance in absolute style into the quarterfinals.
3: और टेनिस में भी आज भारत ने अपने सभी मैच जीते हैं. यूकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी ने कजाकिस्तान के बेबर जुकायेव और डेनिस येवसेयेव की जोड़ी को 6-1, 7-5 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया. वहीं अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी भी अगले दौर में पहुँच गई है. दूसरे दौर के मुकाबले में उन्होंने नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी को 6-2, 6-1 से हराया. वहीं पुरुष एकल के दूसरे राउंड में सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश भी अपने अपने मुकाबले जीत कर अगले राउंड में पहुंच गए हैं. अब मिश्रित युगल के पहले दौर में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा.
2: इट हैज बीन

0: The day of breaking national records earlier this morning in sport climbing, Indian speed climber Joga Purthi delivered a sensational performance to a set new benchmark competing in the qualification round of the women's speed climbing event. Joga clocked a blistering time of 7.28 seconds, finishing 9th overall and comfortably securing her place in the quarterfinals. That impressive 7.28 second climb not only sealed her spot in the next round, but it also shattered her own previous mark to establish a brand new national record for India in women's speed climbing.
1: और नेशनल रिकॉर्ड की बात आपने की प्रेरणा, तो एक और नया नेशनल रिकॉर्ड आज बना है मेंस पोल वॉल्ट में। देव कुमार मीना ने 5.50 मीटर के साथ अपना पर्सनल बेस्ट देते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना लिया है। गौरतलब है कि 5.46 मीटर का पिछला नेशनल रिकॉर्ड भी देव मीना के नाम ही था, लेकिन इसके बाद भी मेडल की दौड़ से वो बाहर हो गए हैं। वो 7वें स्थान पर रहे हैं। वहीं कुलदीप कुमार 5.35 मीटर के साथ 10वें स्थान पर रहते हुए मुकाबले से पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन एथलेटिक्स में कुछ और खबरें भी हमारे पास हैं, क्योंकि विमेंस 800 मीटर के फाइनल में पूजा 7वें स्थान पर रहीं, लेकिन महिलाओं की ऊंची कूद के फाइनल में पूजा सिंह का शानदार प्रदर्शन जारी है और 1.80 मीटर के साथ वो टॉप परफॉर्मर्स में बनी हुई हैं। ऊंची कूद में सुप्रिया बासव राजू भी फाइनल में हिस्सा ले रही हैं। और इसके अलावा विमेंस हैमर थ्रो का मुकाबला भी जारी है, जिसके बारे में हम अपडेट लेकर के आएंगे आपके पास अगले अपडेट के साथ में। तब तक उसका रिजल्ट हमारे पास भी आ जाएगा। और अब इसके बाद जो मुकाबले होंगे उसमें मेंस 800 मीटर का फाइनल है, फिर मेंस 5000 मीटर का फाइनल, और इसके बाद रिले रेस हैं विमेंस और मेंस की 4x400 मीटर, और इसके अलावा रिले मिक्स फाइनल भी है 4x100 मीटर का, जिसमें भी भारत को पदक की उम्मीद है।
0: Let's shift over to the Asian Games leaderboard, where Team India is currently holding down the 11th position overall. The medal cabinet is up to 47 in total, driven by 21 silver, 21 bronze. But the crown jewels are the 5 gold medals India has logged in so far. In cricket, women's cricket team has won gold. In kabaddi, women's kabaddi team, men's kabaddi team, another gold. Kamaljeet and Suruchi Singh, gold. And Neeru Dhanda, the headline story from today's action was Neeru Dhanda's clinical victory in the women's trap individual final. So that is all from the updates for now. We will be back soon with the 5:30 p.m. updates.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 அண்மை நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
4: மதுரை எஃப்எம் 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9
5: எஃப்எம் ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
6: நேரம் மாலை 4:36 இருக்கு. ஆகாஷ்வாணி மதுரை பண்பலை 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9 நாம் இணைந்திருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஆட்டக்கலம்.
7: இன்னைக்கு ஆட்டக்கலம்ல
6: சம்பந்தம் வாழ்க்கையில சில நேரத்துல சம்பந்தமே இல்லாம பேசுவாங்க நேர்கள்.
7: ஆமா கண்டிப்பா
6: நிறைய பேர் பேசுவோம்,
7: சமாளிக்கிறதுக்கும்
6: புன்னகை பூக்களாய்த்துகளும் நினைச்சேன் ஓகே வாழ்த்துக்கள். அந்த புன்னகை என்றைக்குமே மக்களுடைய மனசுல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடியா இருக்கீங்களா? அந்த பினிஷிங் முடிக்கணும் அந்தோனி சாருக்கு, அதான் வந்து டச்சிங்
7: என்ன இதுவும் சமாளிக்கிறது இல்லையா?
6: ஓகே அந்தோனி சார் ரெடியா இருக்கீங்களா?
8: என்ன
6: மீன் பிடிச்சீங்க?
8: நான் அந்த நீங்க ஊட்டி போகணும்னு எனக்கு அவ்வளவு ஆசை சார். எனக்கு நான் நாளைக்கு

0: एक सिल्वर और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में, उसके अलावा 4x100 मीटर मिक्स रिले और महिलाओं की ऊंची कूद में इन 3 प्रतियोगिताओं में भारत ने कांस्य पदक हासिल किए हैं। हम एक के बाद एक इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुलवीर सिंह की शानदार सफलता के साथ। पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया और इसके साथ ही कुल 3 पदक हासिल किए उन्होंने इस एशियन गेम्स में। उत्तर प्रदेश के अतरौली में पैदा हुए गुलवीर ने इसके पहले 1500 मीटर और 10000 मीटर में सिल्वर मेडल जीते हैं और इसके साथ ही वो भारत के दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने हैं जिसने 2 से ज्यादा पदक हासिल किए हैं एक एशियन गेम्स में। इसके पहले पीटी उषा ने 1986 के सियोल एशियन गेम्स में 5 पदक जीते थे जिनमें 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल था। और दूसरी सफलता जो आई है वो आई है 4x100 मीटर मिक्स रिले से, जिसमें गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेश कुजूर, राजराजन अभिनया और हरिता भद्रा की चौकड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया है। पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था इस इवेंट में और पहली बार में ही पोडियम फिनिश किया है। शानदार सफलता है ये भी। इसके अलावा महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा शुरुआत से ही मेडल की दौड़ में बनी हुई थी, हालांकि उनसे उम्मीद जो गोल्ड की थी उससे वो थोड़ा सा नीचे आई और कांस्य पदक लेकिन उन्होंने हासिल किया। इसी इवेंट में सुप्रिया बासव राजू मेडल की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई। एथलेटिक्स के बाकी इवेंट्स में महिलाओं के हैमर थ्रो में अनुष्का यादव और तान्या चौधरी कोई मेडल नहीं हासिल कर सकी। वहीं पुरुषों के 800 मीटर के फाइनल में अफसल मोहम्मद पुलिकलालत 8वें स्थान पर रहे।
1: And recalling another crowning highlight of the first half of the day, history was written at the IG Peripheral General Shooting Gallery as Neeru Dhanda became India's first ever women's trap champion at the Asian Games. The 26-year-old put on a master class in precision, starting her

0: morning by leading qualification with a top score of 118 out of 125. That effort, alongside teammates Manisha Kheer and Ashima Ehlawat, powered India to a glorious silver medal in the women's trap team event. But Neeru wasn't done yet. Stepping into the individual final, she delivered an absolute masterclass under pressure, hitting 28 out of 30 targets. That performance not only clinched the gold medal, India's second shooting gold of the games, but it also shattered the Asian record of 24. With that iconic victory, Neeru became the first Indian woman to win an Asian Games gold in any shotgun event.
1: और हम एथलेटिक्स की बात आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि अब शुरू होने वाला है महिलाओं का 4x400 मीटर रिले फाइनल, जिसका रिजल्ट आते ही हम आपको उसके बारे में भी खबर देंगे। इसके बाद होगा पुरुषों का 4x400 मीटर रिले फाइनल, जिसमें धर्मवीर चौधरी, मनु थिक्कनल्लील, राजेश रमेश और जय कुमार हिस्सा ले रहे हैं।
0: And with those latest additions coming in, Team India's total medal tally has officially bumped up to 50 medals. So it's a half century for India, Mudita, of the medals. The country's breakdown now stands at 5 gold, 21 silver and 24 bronze. Every single addition continues to solidify India's position on the Asian Games leaderboard. With this, we come to the end of this early update, but we will be back soon at 6:30 p.m.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 அண்மை நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டோம். ஆகாஷ்வாணி.

0: நானு.
1: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कंटिंजेंट के लिए आज शानदार दिन रहा है. खास करके एथलेटिक्स में आज पदकों की झड़ी लग गई है. एक और स्वर्ण पदक हासिल किया है भारत ने एथलेटिक्स में. इसके अलावा आज पूरे दिन भर में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर 8 पदक जीते हैं भारत ने. एक एक करके हम उन सभी पदकों के बारे में बात करेंगे, खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे. नमस्कार, मैं हूं मुदिता और स्वागत है आपका एशियन गेम्स के ताजा अपडेट्स में. तो सबसे पहले प्रेरणा, मैं हूं मुदिता और साथ में है मेरे प्रेरणा. तो प्रेरणा, सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड मेडल की, जो आया है महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस में. किरण एम्पुवम्मा, प्राची और विद्या रामराज की चौकड़ी ने 3:29.69 का समय लेकर टॉप किया और आज के दिन को अपने स्वर्णिम दिन में बदला है. और इस जीत के साथ भारत ने इस इवेंट के इतिहास में अपना 7वां एशियाड गोल्ड जीता और 1982 से हर एडिशन में मेडल जीतने का अपना 44 साल का सिलसिला बनाए रखा है. इसके अलावा जो पदक आया है वो है पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में, जहां कांस्य पदक जीता है धर्मवीर चौधरी, मनु थेक्किनिल, विशाल टीके और जय कुमार की चौकड़ी ने. इनका समय रहा 3:01.61. इसके पहले 4x100 मीटर के मिक्स रिले में भी कांस्य पदक जीता भारतीय दल ने. गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेश कुजूर और हरिता भद्रा की भारतीय चौकड़ी 41.06 सेकेंड के समय के साथ, यानी 41:06 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही और इसके साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है. इसके पहले हम बता चुके हैं हालांकि अपने श्रोताओं को, लेकिन एक बार फिर से जिनसे भी मिस हुआ हो हम बताना चाहेंगे कि एथलेटिक्स में 5000 मीटर के फाइनल में गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया और वहीं महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह ने भी कांस्य पदक जीता.
2: And Mudita, while today brought plenty of reasons to celebrate with brand new medals added to the tally, track and field gave us realistic look at just how the competition really is at the Asian Games. It was a session filled with strong efforts, personal achievements and even national records, even if the results did not end with a medal around the neck. Starting with the track events, Pooja lined up in the women's 800 meter final against some of the fastest runners on the continent. She stayed in the mix through the first lap and pushed hard all the way to the finish line, ultimately placing 7th overall with a time of 2:06.72. China's Wu Hongzhou took the gold medal in that race. Over in the men's 800 meter final, Mohammad Afzal was looking to repeat his success from the last Asian Games in Hangzhou, where he won a silver medal. He put up a brave fight against a very fast pack, but as they rounded the final bend, he couldn't keep pace with the leaders. Afzal crossed the line in the 8th place with a time of 1:48.27. Moving over to the field events, India had 2 athletes competing in the women's hammer throw final. Tanya Chaudhary came remarkably close to stepping onto the podium. She threw a distance of 65.35 meter, which was actually the best performance of her entire career. That personal best earned her 4th place, leaving her just 1 spot short of the medal. Her teammate Anushka Yadav also put together a solid series of throws, finishing right behind her in the 5th place with a mark of 64.56 meter. Finally, the men's pole vault final turned out

0: to be a mix of heartbreak and history. Kuldeep Kumar cleared the bar at 5.35 meter, but three missed attempts of 5.50 meter saw him finish in the 10th place. Meanwhile, 22-year-old Dev Meena had an incredible day on the runaway. He cleared 5.50 meter on his second attempt, breaking his own previous national record mudita of 5.46 meter that he set earlier this year. However, because of the overall level of the competition, the bar was set so high that even a brand new national record was only enough to secure 7th place in the final standings.
1: जी बिल्कुल, और अब जब क्योंकि हम बात कर रहे हैं शानदार प्रदर्शन की, तो हम एक बार फिर से अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि आज भारत ने इसके पहले 3 मेडल और जीते थे. ट्रैप शूटिंग में महिलाओं ने 1 गोल, यानी नीरू ढांडा ने एकल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया. वहीं महिलाओं की ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय दल ने सिल्वर मेडल हासिल किया था. इसके अलावा बॉक्सिंग के 90 किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेलवाल ने कांस्य पदक पक्का कर लिया है.
0: एंड विद दीज मेजर अपडेट्स कमिंग इन, टीम इंडिया हैज नाउ ऑफिशियली ब्रोकन इनटू द 10th पोजीशन ऑन द लीडर बोर्ड, रीचिंग अ ग्रैंड टोटल ऑफ 52 मेडल्स.
1: तो इसके साथ ही अब हमको दीजिए इजाजत. दिन की आखिरी अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे फिर से ठीक 7:30 पर. नमस्कार
2: நேயர்களே, இதுவரை கேட்டும் ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி. வணக்கம் அன்பான மனதினி நேயர்களே, ஆகாஷ்வாணி மதுரை பண்பலை 103.3 MHz மற்றும் ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9 MHz அலைவரிசையில் அந்திப்பூக்கள் நிகழ்ச்சியில் அருமையான பாடல்களை நாம் கேட்டு ரசிக்கும் இருக்கோம் நேயர்களே. அந்திப்பூக்களில் முதல் முதலாக தவமாய் தவமிருந்து பெற்ற பாடல் அறிவுமதி வரிகளில் சுபேஷ் அண்ட் முரளி இசையமைப்பில் கார்த்திக் அண்ட் சுஜாதா அவங்க பாடிய பாடலை கேட்டு ரசிக்கலாம்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Hello and welcome back to the Ali updates on Asian Games 2026. I am Prerna Sharma and I have with me Mudita here, and we have bring you back with the updates from the latest Asian Games. So starting with today's result on the archery range, Dhiraj and Neeraj Chauhan both delivered solid performances in the men's recurve individual event to advance to the quarterfinals, while Kumkum Anil Mohod also progressed to the quarterfinal stage in the women's recurve individual category. Over in today's boxing semi-finals, Parveen Hooda scored a convincing 5-0 victory in the women's 65kg division to reach the final, and Ankush Panghal fought through his men's 80kg bout to secure place in the gold medal match, while heavyweight Narendra Barwal fell in men's 90 plus kg semi-final to wrap up his campaign with a bronze medal. Over to you, Mudita.
2: जी प्रेरणा, और आज एथलेटिक्स में भारतीय अभियान समाप्त हो गया है। 1 गोल्ड 9 सिल्वर और 14 कांस्य पदकों के साथ भारत ने कुल 24 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए हैं। आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि आज एथलेटिक्स में भारत ने 5 पदक जीते जिसमें 1 स्वर्ण पदक भी शामिल है। सबसे पहली सफलता आज हासिल की गुलवीर सिंह ने, जिन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में कांस्य पदक हासिल किया और इसके साथ ही कुल 3 पदक हासिल किए उन्होंने इस एशियन गेम्स में। इसके बाद 4x100 मीटर मिक्स रिले में भारतीय एथलीट्स ने कांस्य पदक हासिल किया। गुरिंदर वीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेश कुजूर और हरिता भद्रा की भारतीय चौकड़ी 41:06 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। पूजा सिंह ने महिलाओं की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता और इसके बाद महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में आया स्वर्ण पदक। किरण एम पुवम्मा, प्राची और विथ्या रामराज की चौकड़ी ने 3:29.69 का समय लेकर टॉप किया और इस जीत के साथ ही भारत ने इवेंट के इतिहास में अपना 7वां एशियाई गोल्ड जीता और 1982 से हर एडिशन में मेडल जीतने का अपना 44 साल का सिलसिला बनाए रखा। और भारत ने अपना अभियान खत्म किया एक और मेडल के साथ, जो आया पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में। धर्मवीर चौधरी, मनु थेक्कनलिल, विशाल के जय कुमार की चौकड़ी ने 3:01.61 का समय निकालकर कांस्य पदक हासिल किया।
1: And definitely it has been a very remarkable day for India with 2 goals coming in alongside other prominent medals. And Mudita, looking ahead to tomorrow's archery action, India's compound archers take center stage in the 3 major semi-finals, with the women's team facing the Republic of Korea, followed by the mixed team taking on Thailand, and concluding as the men's team goes hand to hand with Republic of Korea. Meanwhile, tomorrow's boxing schedule features 3 high-stakes semi-final bouts, where Lovlina Borgain takes on Kazakhstan's Natalia in women's 75kg and Kapil Pokharia meets Uzbekistan's Turabek in the men's 90kg semi-final.
2: कल की बात करने से पहले प्रेरणा, हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि टेनिस के मिश्रित युगल के पहले दौर में जो है मिक्स्ड डबल्स का मुकाबला जो चल रहा है, उसमें एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से हो रहा है। पहला सेट भारतीय जोड़ी 6-4 से हार चुकी है। दूसरे सेट में उम्मीदें अभी हमारी बरकरार हैं, वो शुरू होगा और उसके बाद हम देखते हैं। हालांकि टेनिस में आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा क्योंकि इसके पहले के दोनों एकल और दोनों डबल्स मुकाबले भारत ने जीते।
1: कमिंग टू रेसलिंग, निशा फेसेस नॉर्थ कोरिया स्पार्क सोई गम इन द वुमेन्स 68kg व्हिच इज going to be held tomorrow, and later Sunil Kumar competes in the men's Greco-Roman 87 kilo wrestling.
2: और कल मुकाबला शूटिंग में भी देखने वाला होगा क्योंकि 25 मीटर रैपिड फायर में पुरुषों में अनीश भानवाला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं ट्रैप मिक्स टीम इवेंट में आज की स्वर्ण पदक विजेता नीरू ढांडा उतरेंगी काइनन चेन्नई के साथ। तो इसके साथ ही

0: हमारा समय समाप्त होता है, कल सुबह ठीक 9:30 बजे हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आज रात 10 बजे सुनना मत भूलिएगा डेली हाइलाइट्स, जिसमें हम आज के एशियन गेम्स के पूरे दिन का लेखा जोखा आपको देंगे, भारतीय खिलाड़ियों की हर सफलता असफलता की कहानी आपको बताएंगे। तो इसके साथ ही मुझे यानी मुदिता और मेरी साथी प्रेरणा शर्मा को दीजिए इजाजत, कल सुबह ठीक 9:30 बजे फिर से हम हाजिर होंगे। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: நேயர்களை, இதுவரை கேட்டீர்கள் ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 அண்மை நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய ஆகாஷ்வாணி இசை

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हरियाणा के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही लड़की को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती, निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने

0: नया इतिहास रच दिया। आज शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड। और यही नहीं, उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने एक स्वर्ण और एक रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहीं। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल, जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रहीं। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रहीं। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we managed all that support, got her back into the academy. Today, she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी। और आज ये उम्मीद पूरी हुई अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में। लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़, जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया। और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया। और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया। 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें, तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे। 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा।

0: वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
1: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन 65 केजी सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शु 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एट लीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेन्स 80 केजी सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन अ मास्टर क्लास, पुलिंग ऑफ अ ब्रिलियंट कमबैक टू आउटपंच उज़्बेकिस्तान्स फासलुद्दीन। हिज विक्ट्री सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल एंड अश्योर टीम इंडिया ऑफ अनदर कन्फर्म्ड सिल्वर मेडल एट मिनिमम। एंड इन द मेन्स प्लस 90 केजी सेमीफाइनल, हेवीवेट स्टार नरेंद्र बरवाल स्टूड टो टू टो इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन एबेक ओरलबे। डिस्पाइट अ करेजियस एफर्ट, बेरवाल वॉज एज्ड आउट, साइनिंग ऑफ विद अ हार्ड अर्न ब्रॉन्ज मेडल फॉर द नेशन, हिज सेकेंड कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स ब्रॉन्ज। Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a master class, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Oralbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
0: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
0: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है, नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गईं। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
0: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
3: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज़्बेकिस्तान

0: के सर्गेई फोमिन से होगा।
1: आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
2: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों सेट हार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
3: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज्ड द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस्ड 2 सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। 2 सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
2: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
1: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में, तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
2: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगु कैसी रही, जानते हैं अभिनव से।
3: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach, in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
2: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
1: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्काटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं, इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में

0: भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया। किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
2: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी वल्हारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप, आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
0: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगापूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
3: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 தினசரி நிலவரத்தின் தொகுப்பை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
5: மதுரை எஃப்எம் 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9
6: எஃப்எம் ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
7: ஆகாஷ்வாணி மதுரை வானொலி நிலையம், மதுரை பண்பலை 103.3, ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9 அலைவரிசைகளில் இரவை ரசிக்கும் இனிய கானங்களோடு இது பட்டு சிறகு. ரசிக்கும் விதமான பாடல்களை தர காத்திருக்கும் நான் விக்னேஷ் அர்ஜுனன். பட்டுச்சிறகு நிகழ்ச்சியில் முதலாவதான பாடல் மோகன், கார்த்திக், ரேவதி ஆகியோரோட நடிப்புல மௌனராகம் திரைப்படத்திலிருந்து எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் பாடிய பாடல்.